बाकी कैसे तो तुमके इन जगह को बताएंगे शायद सुमो के आगो जे सुबह को कब रास्ता होता कि चौथों के कभी बर्तन था इन गई तो ऐसे एक ले स्टूडियो ये रास्ते ही वाके एवंजेलिस्ट डेविस यागोन निमी ब्रांचेट ने बोल न्यू लाइफ चार्ज एंड प्रेयर सेंटर कब कहते थे ओपोजिट पुलिस स्टेशन आगो बतू ये ने बोल में साया बना नेता हुए रानी kasi tamu tari kita mana raya tatu sab kenyi ni aku cuma pilih tari kita mana gaya ngarai tatu sab kenyi ni otak tin mite go sobe ti enge karati ke karati gap jesu percisi meteng nambam 0757 125 947 0757 125 947. Ibarat evangelist Davis Yagon demi branjit nubon New Life Church and Prayer Center kap katet opposite police station agoba tu ye ta mesa ya bana ne tau gerane kasi tamu tergita menara tapi sab kenyini ago ye juma pili tergita menaga yang arah tapi sab kenyini otago tin mita go sabeti engkara tiga jeso percisi meteng namba 0757 125 947 0757 125 947 Rotono Sheke, Sugaruge, Kebaba, Mugungyote, Ruetap Korotik, Asma, Loliote, Che Moxigishe, Suete, Che Buandus Kelek, Prostate Agalak, Doctor Tanuiko, Chip Krijote, Negigo Nyabigi, Chejange, Aginore, Walutege, Ruteji, Inedati, Enge Patnas, Litain, Fourth Floor, Room 42, Pimani, Agonyoi, Purchase Metang Number 0725 389 991 0725 389 991 0725 389 991